0: जो लोकल है उनको लगा के फिर पूर्ति करते हैं, कम मात्रा दी जाती है यूरिया की और डीएपी की। दिक्कत आती है फसल में, जो है हानि होती है, यानी पैदावार में कमी आती है।
1: There are three crop seasons in India: Kharif, Rabi and Zaid. Every year, India uses 40 million tons of urea. According to the government, the country had 6.2 million tons of the crop nutrient in its reserves as of March.
2: We have just harvested the Rabi crop where we didn't require much of the fertilizer. In the forthcoming Kharif season crop, if the fertilizer prices increase, and generally what we find is that fertilizer is not much responsive to this kind of changes because farmers have to apply. They will buy it even if the prices rise to sustain. So the margin, of course, who will bear that cost? It is basically the government. And when this kind of, you know, crisis happens, government again raises the subsidy for the fertilizers.
3: What government of India had done was we had bigger stocks of urea and other fertilizers than compared to even the last year. So that helped. The second is we have prioritized gas allocation for urea production. Government of India is also trying to secure urea, DAP and potash from other countries that are not affected directly by the Strait of Hormuz. And they're rerouting some of it through the Cape of Good Hope. So that increases the transport cost, but at least secures fertilizers for us.
1: India had, in the past, banned rice exports during times of shortage. For now, Delhi has not signalled an export restrictions. That's a relief, given Indian rice accounts for over 40% of world rice exports, shipping more than the next three largest suppliers combined. The shutdown of the strait, though, has left an estimated 400,000 tons of rice stranded at ports or at sea. Sri Jagdamba Agrico is one of the leading rice exporters in India, selling over $100 million worth of basmati annually.
4: अरे मुख्य खरीदार अगर बासमती की बात करता हूँ मैं पर्टिकुलर की बासमती की ईरान, इराक और सऊदी अरेबिया। टोटल हिंदुस्तान से 6 मिलियन टन लास्ट ईयर हमने बासमती का एक्सपोर्ट किया था, जो कि एक रिकॉर्ड बासमती का एक्सपोर्ट था, जिसमें से 3 मिलियन इन तीन देशों के लिए गया था और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में। हमारा तकरीबन 1.5 लाख टन चावल, बासमती चावल, जो कि रास्ते में बंदरगाहों पर अटका पड़ा है, और इतने चावल हमारा हिंदुस्तान की बंदरगाहों पर अटक गया था। इंदर जो हिंदुस्तान की बंदरगाहों पे चावल अटका, वो भारत सरकार ने हमारी एसोसिएशन के साथ मिलके उन्होंने उस पर कदम उठाए और पूरा हमारा जितने भी एक्सपोर्टर थे उनकी मदद की। हमारे ऊपर जितना पोर्ट का डैमेज था वो सारा उन्होंने हमारा माफ़ कर दिया और हमने वो चावल पूरा का पूरा बैक टू टाउन अपने वेयर हाउसेज के अंदर लेकर वापस आ गए।
2: व्हेन समथिंग हैपेंस इन इंडिया on the agricultural front, because we are the largest consumer as well as a producer also. So the world awakes. So India will import, so prices will keep on. Okay. So India has been, you know, benevolent to all the countries which are in its neighborhood, whether it is Nepal, Bhutan, Bangladesh, and always provided, you know, food security support, even during COVID-19 times also. If this kind of, you know, blockage remains, our perishables will be highly affected. Basically, you know, shrimps, fruits and vegetables. If the supplies from India, they don't reach to the countries where they require, so definitely it will have a ripple effect there in terms of, you know, increasing the prices, in less affordability to food to their populations.
1: Then there is also the cost of shipping. Fuel price and insurance premium hikes add to the expense.
4: जहाँ पर $600 पर कंटेनर का फ्रेट था, वो आज $3,000 पर कंटेनर का फ्रेट आ गया, जो कि 5 गुना वृद्धि हो गई है, जिसका प्राइस के ऊपर, हमारे लॉस प्रॉफिट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ट्रेड के ऊपर आया है। खरीदार चावल की, बासमती चावल की डिमांड नियंत्रण बनी हुई है, पर उसका जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमें बेचने में भी डर लगता है, क्योंकि वार के चांसेस की वजह से इंश्योरेंस भी इसका कवर नहीं मिलता है।
1: Looking ahead,

0: हो जाए और पूरे विश्व के अंदर शांति बने और हमारा व्यापार जैसे पहले चलता था उसी तरह व्यापार चले और किसी भी देश के अंदर जो हमारे खरीदार देश हैं उनके अंदर आज चावल की कमी वो लोग महसूस कर रहे हैं। अगर ये वार लंबी बढ़ती है तो हम चावल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे।
1: Baba ang matuluyan na talagang mga tao dito ng maingista. Wala na. Tumigil na. Ultimo mga ibang tao dito, construction na lang pinapasok.